0: झुमुरता तक झुमा झुम झुम झुमा रे तक झुम झुम झुमुरता।
1: एथरर शिल्पी रामेश्वर दास।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है

0: पूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गुड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
7: में जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8

0: परिवर्तन के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
1: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
3: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
4: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख, दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता

0: हेलो आकाशवाणी संबलपुर। हाँ भाई किए कहते? नमस्कार नमस्कार भाई, बढ़िया आप चिन्ही चन के अच्छा परिचय टी दे भाई। बढ़िया, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया आपन को सुनी की बहुत बढ़िया लगला भाई। किंता दियो पा बोल अच्छे। हां हां हां, जाओ जाओ भाई, आपन मन कर भल पाए एंता थाउ। फोन इन रे फोन करी चन भाई, प्रथम कलर आपन आन आगे। आज केनटा सुनमा भाई? अच्छा बढ़िया गीत टे बाची चन पहला पहला कार्यक्रम थी जे भाई। खरा तो बने हो जे केंदा केंदा करू जन अपन सब सतर्कता मानु चन कि नहीं? हाँ पानी टिके बने मात्रा रे पीउन। हाँ बढ़िया, आमर माँ मैंने घर बाहला बेले कहसन ना तुरंत टिके पी गिरी जा, कांकेर कुकीर टिके खाउन। तरबुज फरबुज खाउ चन तो? बढ़िया, आपन गाँव रे समस्ते भल भाल? बोले आपन कर पसंद रो गीत कहा के डेडिकेट करमा आज्ञा? जा हो, बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा।
1: आज्ञा

0: हेलो, आकाशवाणी संबलपुर।
1: हाँ नमस्कार, मैं गोविंदा मेहर कहूँ जाए
0: आज्ञा आज्ञा, हेलो
1: और
0: अनुरोध
1: सोना
0: कार्यक्रम
1: सावरा
0: के
1: जिला बरगढ़ नुनाने।
0: बहुत बहुत स्वागत। आज्ञा किंता
1: मैं तो
0: अच्छन
1: बहुत खुश लग रहा मते आपन एटा फेर आसी के रे जन गले बहुत खुश लग रहा नाने।
0: जा हो भाई माने मोर एत्ते मने रखिछन, भौणी मानकर भल पाएबा, भाई मानकर भल पाएबा, मते बहुत रिमोट हो जाउछ मैं पूरा। हैं
1: नाने मते आने सर पड़ गेला नाने, जतेले आपन अशोक पाणि दे देले हमर जो माने तो संपर्क कार्यक्रम जतेले चिट्ठी पत्र उपस्थापन को देले, एत्ते स्पीड बढ़िया रे, एत्ते बढ़िया उत्तर सार, बहुत बढ़िया लगला माने।
0: जा हो जा हो, आपण माने शताब्दी एक्सप्रेस काय काय एक्सप्रेस ना दे दे इतले, सेति लागि बे बहुत खुशी है जे भाई। केनता अछन, भल अछन कि नाई, देह पा बढ़िया अछन? आउ आपण काम धाम संगे आउ अन्यान्य जन कविता लेखा लुखी चली छे कि नाई?
1: हां नानी, कविता लेखा लुखी चली जाय, मंच प्रोग्राम माने जाउ छु आमे।
0: अच्छा, मंच प्रोग्राम जाउ छन?
1: हां नानी,
0: बेले सांप्रतिक परिस्थिति के देखि गिरी काय काय कविता रखि छन लेखुचन?
1: वर्तमान ये खरा दिन के जन जंगल परिमाण हो जाए आ, हम टिके टिके अवहला लेके जंगल संपत्ति पुड़ी के दोसी योजना ने
0: निहाती निहाती
1: और ऊपर गुटे कविता आ जे एक पेड़ मां के नाम।
0: एक पेड़ मां के नाम बहुत बढ़िया, हमर सरकार कर द्वारा एटा के प्रोत्साहन करा जाउ छ समस्त को लागि। गछटे लगाले तो छाईटे पैमा भाई,
1: हां तो नानी।
0: हैं बेले छुटियाटे कविता बेले पढ़ी जाई पारे?
1: हां छुटिया कविता दे बेसे लमान होए।
0: ठीक ठीक
1: कर पढ़वा ठीक जाटी गुटा करे।
0: आज्ञा आज्ञा, हमें सूचना दमा हमर जितकी श्रोता बंधु अछन। हो
1: तो कविता ना ला एक पेड़ मां के नाम।
0: आज्ञा।
1: माखे उंगरिया बालु छुआ के कानू दला धरी रहा, ओजा बेला आ रे नतिया देखमा मा कर बिहा, ए देख से पहाड़ ऊपर के केनता जल जी जुए, केनता और रा केनता मैया दुरबारी नहीं हुए, जे हुला मन तान तान दली केनता दे जमसा जी, सकाल पहले ओजा नति दुए कल के खेला मा बुझी, एला पांचिया वाला कुकरा डबे के सब आड़े हुला जारी, के नो आइले वन मुंसे हमरी जमल टके दिले सारी, एक नो बेला सकाल सकाल जाई दिले महल बेटी, किस समय ते बुलेरो गाड़ी ना आइले पिकनिक पार्टी, रोना बड़ा कले कुकरा ना आइले हमारी जंगला कल्ले भुजी, दुईटा पिलाए बस पियार के आसु दिले मत खुजी, ओपस तुम्हें आलम तो गोटे पहाड़ ऊपर के चढ़ी, गुचा पत्र लुकी लुकी कर मारुला निया खाड़ी, नद दी गली में पास के जनता फेकी नेला झट करी, पहुंचिला बिड़ी गुचा ऊपर पड़ी जल्ला धो धो करी, जबकि डाकले जबकि हाकले ना सुनले मोर कथा, जनिया मनुष्य में जेली भेली भी है गोली सत्य कथा। आज्ञा मने इन उम्र पर वारो जे
0: आज्ञा,
1: जो जा जगे तले आम गज गुटे ओजा जगे तले आम गज गुटे फल के कैसे नाती, जंगल जंतु जंगल रहबे गा के ना पसे हाथी, जंगल रहले मंगल चलबा मंगल चलले वर्षा, सुनार के दाम पर हसी उठबा खेमा भात गर्ता, जीव जंतु तरे तिर गुण सबे पाए बिचरा, जटे बस के ना बढे आ 50 डिग्री करा, ठीक को जगे बोल गो जे मोर को बैठ के बाबो
0: एकदम एकदम ठीक कहूचन। बढ़िया एकदम ठीक कहूचन भाई, एकदम ठीक कहूचन, मझीनु आपन को अटकाली इथि लागी जे ठीक कथा कहूचन आ पूरा समस्त को भेदला बागी कथा कहीचन। जेतेले जुए जलुतिसि आ जंगल के आमे देखुतुसु, आखी जेतकी हमकु माने ततला चेतासी, हमर शरीर के भी से हाबाटा आसी, तो सभे दायित्व संपन्न कर्मा आमे माने। बढ़िया कथा कहले, बहुत बहुत धन्यवाद कविता लगे, आम श्रोता बंधु मान लगे बढ़िया सूचना भी इति थिला। बोले भाई केन गीतरा सुनमा बोले?
1: आज सुनमा हम सोना पंजर मोर मन उड़ जारी गीतरा सुनमा ने।
0: अच्छा, बोले आमे तो पहला आपन जे एते बढ़िया कविता दे छन जे आपन को हमर तरफ समर्पित कर देलो आपन को पसंद था कि हैं आ कहा कहा के समर्पित करबा के चाहबे कि भाई सुनमा आरंभ करमा काई बहुत ते हमर श्रोता बंधु माने टाकी थिबे।
1: बोले गीत तो नानी हम जितके जन आका होले समर्पण जितके नाम श्रोता आसन कोरोना श्रोता समस्त को डेडिकेट कर नन।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समस्त को भाईंकर ई गीतटा हमें समर्पित करूचु, आसुन समस्ते मिली मिसिक सुनमा। भाई आके फिर फोन कले कथा हमा। नमस्कार भाई।

0: हेलो अनुरोध।
1: आकाशवाणी सम्बलपुर समिया सकाल 10 बजे जाउचे हिंदी रे संवाद सुनुन रेलेखरी प्रचार करू जो आकाशवाणी
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी इस यात्रा का मुख्य ध्यान भारत और इटली के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर रहेगा। इस दौरान विशेष रूप से भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वर्ष 2025 से 2029 के दौरान संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान की ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एथरर सिनेमा सपनर नायिका गायछन विनोद राठौड़, गीत रचना अरुण मंत्री, संगीत प्रशांत पाढ़ी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: इत्र सुनन तो आखी मो आईना सिनेमारे गीतटा गाइछन सोनू निगम आर पामेला जैन। गीत लिखिछन देवदास चोटराय, संगीत थी सजिछन दीपक कुमार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: ओयूटी अधीनरे ओमबाडीसी अनुदान प्राप्त रे कार्यकारी हेतुबा सीबीएसई विकास प्रकल्प रे 6 मासिया सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम समर्थ कार्यकारी हेउछि खणी खदान पूर्ण राज्यर 7टी जिल्लार ग्रामीण युवक युवतींक दक्षता वृद्धि पई कृषि विज्ञान प्राणी विज्ञान उद्यान विज्ञान मत्स्य विज्ञान रे पिला माने 3 मासर क्लासरूम पढा ओ 3 मासर प्रैक्टिकल पाठ पढिवार सुविधा रहिछि तेबे आउ देरी न करी देवगड जिल्ला कृषि विज्ञान केन्द्र सह जोगाजोग करंतु।
1: आपण माने सुनुछन गुटे हिंदी सिनेमा गीतर कार्यक्रम इथिरे सुनुछन हमेशा सिनेमार केतेटा गीत संगीत थी सजेछन अनु मल्लिक ए गीत के गाइछन उदित नारायण आर साधना सरगम गीत लेखिछन राहत इंदोरी।

0: ଇନ ଶେଷ ହେଲା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ଶୁଣିଲେ ହମେଶା ସିନେମାର କେତେଟା ଗୀତ ଗୀତମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗୀତ ସଜେଇଥିଲେ ଅନୁ ମଲ୍ଲିକ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଏହାଦେ ସମୟ ଦିନର 11 ବାଜବାରକେ ଯାଉଛେ। ହିନ୍ଦୀ ଦି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁନ୍ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ର ନୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से बंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତକେ ପୁରାତନ ରଚନାନୁ ଗାଇଛନ୍ ଦିଲୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା।

0: कराइबा लागि विशेष पदक्षेप हातकु नेछन्ति राज्य सरकार।
1: 2024 सेप्टेम्बर 8 तारिखरु नोभेम्बर 8 तारिख पर्यंत एहि प्रक्रिया चालू रहिबो।
0: जेउ चासी माने पीएम किसान योजना रे शामिल थाई मध्य निज पंजीकृत नाम विवरणी बा प्रोफाइल सह जमी जमा संक्रांतीय तथ्य संयोग करि नाहंती सेमानकु आर्थिक सहायता उपलब्ध होई पारु नाही।
1: एथि पई चासी भाई ओ भूणी माने निकटस्थ जनसेवा केंद्र को जाई जमी जमा तथ्य प्रदान सह कृषक ओडिसा पोर्टल रे निशुल्क पंजीकरण कराइ नियो।
0: हाँ, जमीर म्यूटेशन तारीख 1 फेब्रुआरी 2019 पूर्वरु होइतिबा आवश्यक।
1: कृषि ओ कृषक सशक्तिकरण विभाग ओडिसा सरकार।
2: धरणीधर पटेल लेखानु ई गीत के गाइछन अशोक कुमार सोना।

0: ଆମ ରାଜା ବାବୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଘରେ ଏସି ଫ୍ୟାନ ସବୁ ଚାଲିଥିବ।
1: ଓହୋ ମା, ତମର ପ୍ରତି କଥାରେ ଟେନସନ।
0: ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କେତେ ଆସୁଛି ଜାଣିଛୁ?
1: ଦେଖ ମା, ଘରେ ସୋଲାର ଲଗେଇଦେଲେ ଚିନ୍ତା ଯିବ।
0: ହଁ, ସେଇଟା ଯେମିତି ମାଗଣାରେ ହେଇଯିବ।
1: ଜାଣିନ କି ସରକାର ପରା ଏଥିପାଇଁ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି।
2: ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟ 138,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର .gov.in ରେ ଆଜି ହିଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ।
3: ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେ ଜନ ଜନ କି, ସଭି କି କୁଛ ଅପନି ସି, ସଂଘର୍ଷୋ କେ କୁଛ କିସ୍ସେ, କାହାନୀ କୁଛ ସଫଳତାଓ କି, ଅନକହି ବିରାସତ କି, ଉମ୍ମୀଦେ ନୟେ ଭାରତ କି। ମହିନେ କେ ଆଖରି ରବିବାର କା ରହତା ହେ ଇନ୍ତଜାର, ମଲିଆଚଲ କେ ଆଞ୍ଚଲ ସେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଲ କେ ଆଙ୍ଗନ ତକ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କେ ଘାଟ ସେ ହିମାଳୟ କେ ବିସ୍ତାର ତକ, ହୋତି ହେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ ସାଥ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
4: कौन रीमा, घरे सोलर लगे देला?
5: हाँ मधु अपा, एबे आउ बिजुली बिल पाई चिंता नहीं।
4: चिंता नहीं माने?
5: हाँ अपा, सोलार करी देले मास्टर को 300 यूनिट पर्यंत बिजुली बिल बंची जीवो।
4: सतरे?
5: खाली सेती किनु हाँ अपा, सौर शक्ति व्यवहार कले परिवेश भी सुरक्षित रहिबो।
2: आज्ञा हाँ, पीएम सूर्यघर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती। पीएम सूर्यघर .gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
6: एथर सुनून ए गीतटा गाइछन शेषदेव दास लिखिछन तरंग सेन मेहर।

मैं प्रेम की दीवानी हूँ सिनेमार ए गीत के गायछन चित्रा आर के लेखिछन देव कोहली संगीत सजेछन अनु मल्लिक।

माल बनाया, कितनी उजरत दी लोगों को, कितना बिल दिखलाया। कौन सी फाइल किस दफ्तर से कैसे हो गई चोरी, किसने कितनी गद्दारी की, कितनी भरी तिजोरी। किस मिल मालिक के पैसे ने कितने वोट कमाए, हर कुर्सी मिली तो देशभक्त ने कितने नोट कमाए। रिश्वत से ही छुपे हुए थे सब काले करतूत, नंगे होकर सामने आए।

0: गाड़ी तिरछी चलाए चलाए आके झूम
1: भाई आड़ी चला चला के झूम तिरछी चला चला के झूम बाजू
2: बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम पम पम यहाँ चलती को गाड़ी।
3: आर पार कथचित्रर एही गीतटिकु गाइछन्ती गीता दत्त। गीत रचना मजरू, संगीत निर्देशना ओपी नायर।

0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
0: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
0: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
0: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अक्रम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
0: जी,
1: तो विमलेश जी, अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी जी जी श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
0: जी,
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
0: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
0: जी,
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में।
0: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
0: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है, जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं, एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है, जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
0: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेजन का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
0: जी,
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी।
0: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेजन वर्षा वन ज्यादातर अमेजन नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओ, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेजन नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेजन नदी उफान से भरी रहती है।
0: जी,
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है, तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है, तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेजन नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेजन वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
0: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जाँच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जाँच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello, children.
4: Hello, ma'am.
5: Hello, ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine, ma'am.
5: I am fine, ma'am.
6: How are you, ma'am?
3: I am good. Thank you so much, Vanya. All right. So, children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
5: Okay, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes,
5: pets are so lovely.
3: Right, Soha.
7: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
7: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
8: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
9: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
5: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
10: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
11: Ma'am, parrot.
3: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
12: Any guesses?
3: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
4: Yes, ma'am.
13: It will be fun.
3: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black. As you know. How to be beautiful. He wanted to know. Colorful feathers. He wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it in his tail. Then he found another. He picked up. All without fail. He stuck them. In his wings. Put one on his head. I am now beautiful. He danced and said. The other crows
4: laughed.
3: laughed at him.
4: Laughed at him.
6: Oh, what a fool you are.
4: Oh, what a fool you are.
6: You are beautiful in black.
4: You are beautiful in black.
6: We love you.
4: We love you.
6: For what you are.
4: For what you are.
3: So children, now listen to the same poem in a lovely song.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी दीदी
2: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
1: हाँ दीदी।
2: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
1: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
2: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने।
2: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है मगर।
2: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
2: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
2: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते एक पौधा लगाओ?
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
2: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, नई खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए मालिक काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: मालिक काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा,
2: शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिक काका, ये कौन सा पौधा है?
3: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
3: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
3: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
3: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
3: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
3: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
3: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिक काका।
3: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
3: जी दे।
0: चलिए दादाजी।

0: राजू सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सुनुथिले एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। श्रोतामानंकु जणै दउछु जे आज अपराह्न 2:45 रे शुणिपारिबे हिंदी कथचित्र गीतर कार्यक्रम। अपराह्न 3:00 रे किसान भाषार सामाजिक एवं सांस्कृतिक धारा उपरे आधारित किसान भाषार विशेष कार्यक्रम मक्का पुपु झक्का झक्का। अपराह्न 4:02 रे पुणि थरे हेलो अनुरोध कार्यक्रम। संध्या 5:02 रे लोकगीत कार्यक्रम रे खंजणी भजन परिवेषण करिवे केदार सुनामी एवं साथी। संध्या 5:30 रे युववाणी संकल्प क्रम रे सुनिवे आलोचना नगर योजनाकारी भावरे कैरियर आलोचना करिवे आद्यांश माझी। संध्या 6:10 रे ओडिया लघु संगीत। संध्या 6:30 रे उज्ज्वल आम देश रिले करी प्रचार करिवो आकाशवाणी कटक केन्द्र। राति 7:25 रे जिल्ला हालचाल रिले करी प्रचार करिवो आकाशवाणी कटक केन्द्र। राति 7:30 रे कृषि संसार कार्यक्रम रे चासिंग सहित साक्षात्कार क्रम रे सुनिबे शिशिर मल्लिकंक सहित साक्षात्कार। राति 8:02 रे संबलपुरी गीत कंठशिल्पी नवीन कुमार एवं गीतांजलि पढ़ो। राति 8:15 रे ओडिया भक्ति संगीतर कार्यक्रम। राति 8:30 रे शास्त्रीय संगीत इथिरे लघु शास्त्रीय संगीत परिवेषण करिवे शोभा गोटू। राति 9:15 रे स्पॉटलाइट रिले करी प्रचार करिवो आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु। राति 9:30 रे संबलपुरी नाटक काल रचना प्रशांत कुमार माझी परिवेषण चेतना एवं चेतना सांस्कृतिक अनुष्ठान धनुपाली संबलपुर निर्देशना डॉक्टर द्वारिकानाथ नायक प्रयोजना मुरलीधर पंडा। राति 10:30 रे ओडिया लघु संगीत ए थिला आज प्रसारित होगा किसी कार्यक्रम संपर्क में सूचना आकाशवाणी संबलपुर। वर्तमान समय दिन गोटाए होगा जाऊँ हिंदी में संवाद शुणु रिले कर प्रचार करुचु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र।
3: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों

0: के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यु बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त बात हुई है।
2: आकाशवाणी संबलपुर आरंभ करुचु सुगम संगीतर कार्यक्रम। कार्यक्रमर प्रथम गीतटीर कंठशिल्पी अभिजित मजुमदार, गीत रचना बृंदावन जेना।

0: talks with Xi on regional and global developments. U.S. President Donald Trump will attend the G7 summit in France next month amid growing tensions between Washington and several European allies over the Iran conflict. According to a White House official, the summit to be held from June 15 to 17 in Avion-les-Bains in southeastern France will focus on issues including artificial intelligence, trade, critical minerals, immigration, and global security. In Congo, the death toll due to Ebola outbreak has risen to 136. Health Minister Roger Kamba informed this amid the spread of deadly virus that has gripped the eastern part of the country. According to Congolese health authorities, the country has recorded 543 suspected cases and 32 confirmed infections, while neighboring Uganda has reported 2 confirmed cases. On to sports. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outline roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं प्रेस वक्तव्य समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है।

0: पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री उत्तर बंगाल सचिवालय उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल LPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: इतेबेल जाए कार्यक्रम शुणुले आकाशवाणी दिल्लीरु आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे कि समय परी।

0: तो इधर नम इ प्रकार गीत पाड़ा तारो नम नालदात भी हेले टीके अगली जेन गीत बन पाड़कार जेन टेड़ेना गीत बो हू बाकेन हन्ने प्रकार गीत बन प्रकृति एका बाकेन पाड़नार आरो इ जेन गीत पाड़ल नार नम उनटा बैठकिनु पाड़नार का हन्ने दल दल हेकरी पाड़नार निमेतरा कने हू कथन गीत तेंगो
1: बहुत बढ़िया बात उनटा कुको कुकर की बेंजा धार्जो मंचाकरा एर किन चेन छोटे बाकी आदिन तेंगलेन हेले बेंजा पूर्वनु आजकल ता ब्राह्मण बेंजामन चाकेरा नामे हुन्ने मल्लारु लेकिन दुई दिन आगली इंदर कार्यक्रम बन रो नामे

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲିକୁ ରିପୋର୍ଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
2: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ଶୁଣୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ।
3: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଖିଆ ଖବର ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଇଟାଲୀର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ଜିଓ ମେଟାରୋଲାଙ୍କୁ ଭିଲ୍ କଲେ ସାକ୍ଷାତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ 2024 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆର୍ ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକେ ନେଇକରି ଚୀନ୍ ଆଉ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସିଓଲଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହନ୍ ଗିଉ ବାକ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ମଣିଷ ଆର୍ ପୃଥିବୀ ଲାଗି ମହୁମାଛି 101 ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକରି ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀ ମନାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ମହୁମାଛି ଦିବସ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଭବନର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୈଠକ କରିଛନ୍ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। କହିଲେ ଲୋକ ଉନ୍ନତାର ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ଦେବାର ଲାଗି ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ ସରକାର। ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ ତଳସ୍ତରନ ଖେଲର ବିକାଶ ଆର୍ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଜରିଆନ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଲାଗି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଓଡ଼ିଶାନ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆର୍ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରନ ଏତକା ସହଯୋଗ କରବା ଜାପାନ। କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି ବାହାରିଲା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷା ଫଲ ପାସ୍ କଲେ 341,781 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଜୁଲାଇ ପହିଲା ହପ୍ତାହ ହେବା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସୂଚନା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାନ ଧାନ ଘିନ୍ବାର ଲାଗି ଏବା ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ଖୋଲ୍ବା ମଣ୍ଡି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ ଯୁକ୍ତଦୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 577 ମାର୍କ ରଖିକି ରହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଟପର। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଆଜି ମୁହାମୁହିଁ ହେବେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆର୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। ଏବଂ 7 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର କେତେଟା ଜାଗାନ ହୋଇପାରେ ହାଲକାନୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା। ଏଚ୍ନିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ନ ଶେଷ ହେଲା। ଇତର ଉତ୍ତରର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଶୁଣିପାରିବେ ରାତି 8 ବଜେ।
0: ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ। ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ।

0: पशु पक्षी को अंशुघात रक्षा करने कि उपाय
1: अंशुघात ना दिन एगारटू अपराह तीन टा पर्यंत टाण खरारे गृहपात प्राणी मानू बाहर को न छाड़ी गुहा छाई स्थान में रखत
0: पशु पक्षी को स्वच्छ थंडा पा पीवा दिंतु एवं प्राणी विश्राम स्थान व गोठरे जलकुंडर व्यवस्था करतु
1: गुहा कबाट और झरकार ओदा अखा झुलाई मझे मझे पा सिंचन करतु
0: बुला पशु और पक्षी को अंशुघात रक्षा करने घर आगे जलकुंडर व्यवस्था करतु
1: अंशुघात पशुपक्षी मैंने किसी खाती ना पटिटे श्वास नेबा सहित धके हुंती पाटीरू और नाकपुडारू फेण बाहरे और समय समय जीभ पदा को बाहरी आसे
0: अंशुघात आक्रांत प्राणी को तुरंत ठंडा छाई स्थान को स्थानांतरित करंतु प्रचुर ठंडा पानी पीवा को देबा सहित निकटस्थ प्राणी चिकित्सकंक सह परामर्श करंतु
1: अधिक जानिबा पई टोल फ्री नंबर 1962 किंबा 155333 रे जोगाजोग करंतु
0: मत्स्य और प्राणी संपद विकास विभाग ओडिशा सरकार
2: श्रोतामाने शुणुछन्ति ओडिया लघु संगीत कार्यक्रमर परवर्ती गीतटि शुणन्तु कण्ठशिल्पी ह्युमान सागर ओ असीमा पण्डा गीत रचना पुष्पक परिडा संगीत असाथ निजाम

0: सूचना शिक्षा और मनोरंजन बेतार बाणी आकाशवाणी
1: मु काली मा पुतुरा घर को जाई के आसीली देखी कि आश्चर्य हेली कि से माने दिन जाको एसी लगाउ छंती सब बेले वॉशिंग मशीन चलाउ छंती घरे दीदीटा फ्रिज अछि किंतु तार बिजुली बिल जानिछु केते आसुछि जीरो मु पचेरिला रु पुतुरा कहिला
2: दादा सब से ऊपर वाला रे दया माने सोलर पैनल रो
1: मु भाबिली एबे तो लगैबा को ही पड़िबो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी

खाद्यान्न पैदा करेंगे हम, दूसरा खाद्यान्न तो चाहिए लेकिन खाद्यान्न में पोषण भी चाहिए, पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है। और इससे भी आगे तीसरा जो लक्ष्य है किसानों की बेहतर आजीविका आय बढ़ाना है, सुनिश्चित करना है वो सुखी जीवन जिए, अन्नदाता सुखी भवा, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, क्योंकि केवल धान और गेहूं से काम नहीं चलेगा, दलहन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए, उसका उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं उस पर बात करना। हमारे सामने जो समस्याएं बहुत संक्षेप में उनका जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा, एक जिस पे हम सबको मिलकर काम करना है वो है हमारे किसान के पास लैंड होल्डिंग कम है, जोत के आकार हमारे छोटे हैं, पूर्वी भारत की आबादी घनी है, अब आप इन सब राज्यों को देख लें, घनी आबादी है तो छोटी छोटी खेती है, तो इस छोटी खेती में कैसे फायदे की खेती बने। और इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, अधिकारी मित्रों से भी, कि इसको केवल नारा मत रहने दो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब केवल अनाज से काम नहीं चलेगा, अनाज के साथ थोड़े से मैं फल भी, सब्जियां भी, मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, अलग अलग गतिविधियां करनी पड़ेगी। आज दूसरी हमारे सामने चुनौती है, और वो चुनौती है हमारी खेत बचाने की, केमिकल फर्टिलाइजर का यद्यपि पूर्वी भारत में कंपेरेटिवली कम है लेकिन फिर भी कई जगह असंतुलित उपयोग हो रहा है। मिट्टी के तत्व कौन से जाने बिना डाले जाओ खाद, उसके कारण खर्चा भी बढ़ता है, उसके कारण जमीन का स्वास्थ्य भी खराब होता है। और इसलिए हम संतुलित खाद के उपयोग पर कैसे किसान को ले जाएं, प्रेरित करें, जो जरूरी है वो डालें, लेकिन अनावश्यक डालने से माटी का स्वास्थ्य भी खराब होगा और धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए अन्न उत्पादित करने से इनकार कर देगी। तो हमको उस दिशा में जाना है, प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री जी के फोकस का इलाका है। तीसरी चीज, ये हम सबको सोचना पड़ेगा, ये फर्टिलाइजर का उपयोग खेती के अलावा, सब्सिडी वाले फर्टिलाइजर का उपयोग और कहीं नहीं हो, ये डाइवर्जन हो जाता है, क्योंकि किसान के लिए है सस्ता खाद, 266 की यूरिया की बोरी, 1350 की DAP की बोरी, खाद की बढ़ती कीमत किसानों पर उसका बोझ ना है। इसलिए अभी 41,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगा हो रहा है, खाद मिलने में कठिनाई जा रही, मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं है, भारत सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है कि कहीं से जहां मिले वहां से लाएंगे, किसान को कमी नहीं आने देंगे, लगे हम लोग। एक चीज और जो बड़ी आती है, मैं सब अधिकारी मित्रों से भी कहना चाहता हूं, वो है घटिया खाद, नकली पेस्टिसाइड, कई जगह पर्याप्त तत्व होते ही नहीं है और भरी बोरियों में दे दिया किसानों को, किसान डाल रहा है, फायदा ही नहीं हो रहा, पैसा ज्यादा लग रहा है, लागत बढ़ रही है, और पता चला कि जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इल्ली है, बाकी मर ही नहीं रहे उसमें। ये नकली के खिलाफ अभियान है, व्यापक पैमाने पर अभियान, नकली कारोबार करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, उससे बड़ा अपराध कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब ये पूर्वी क्षेत्र है जो हमारे देश का, ये दलहन के लिए आदर्श है, और इसलिए दलहन मिशन को हम कैसे कामयाब बनाएं, और दलहन मिशन कामयाब तब बनेगा जब किसान जो दाल पैदा करता है उसको भी हम खरीदने का काम करेंगे, तो खरीद के सिस्टम को और बेहतर, दलहन तिलहन के PM आशा के अंतर्गत मैं पांचों राज्यों से कहता हूं, आग्रह करता हूं कि आप आपके यहां जो समय उपयुक्त समझे आप विकसित कृषि संकल्प अभियान बनाइए, आप जो 15 दिन तय कर लें, 20 दिन तय कर लें, उस समय हमारे वैज्ञानिकों की टीम आपके राज्य में आएगी और आप जो कार्यक्रम बनाओगे किसानों को समझाने का काम। रिसर्च और अनुसंधान सीधे किसान के पास पहुंचना चाहिए, तो उसमें भारत सरकार आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। अवधि आप तय करें, उसमें थोड़ा समय मुख्यमंत्री जी भी देंगे, थोड़ा कृषि मंत्री देंगे, बाकी लोगों को लगाएंगे तो ज्यादा प्रभावी बन जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं हमारा रिसर्च, शोध और अनुसंधान नीचे किसान के पास तक पहुंचे, तत्काल उसको लाभ मिले। एक और मैं आग्रह करूंगा, फार्मर ID तेजी से अब बनाने का काम चल रहा है, ये फार्मर ID बहुत जरूरी है। फार्मर ID का मतलब है कि किसान के सारा विवरण एक ही जगह आ जाए, उसका फायदा ये होगा कि अगर वो बैंक लोन लेने जाएगा तो अभी तो कागज ये ले आ, वो ले आ, वो ले आ, और कागज के लिए भटकता फिरता है वो। फार्मर ID अगर उसके पास है तो सारा विवरण एक ही जगह है, 1 मिनट में 2 मिनट में बैंक लोन सैंक्शन कर सकता है। हॉर्टिकल्चर पर विशेष रूप से ध्यान देना, जैसे आज ही आम की किस्मों मुख्यमंत्री जी के साथ हम देखते हुए चले आ रहे थे, आनंद आ रहा था, इतनी आम की किस्में उड़ीसा में पैदा हो रही है। क्लीन प्लांट मिले, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे पौधे कैसे मिले, नर्सरियां कैसे लगे, तो इन सब क्षेत्रों पे हमको काम करना है, और इसलिए हम आज साथ बैठे हैं। साथ बैठ के जब हम विचार करेंगे तो संपूर्ण विचार होगा, पूरे देश का एक करते तो इतना टाइम नहीं मिलता था, इसलिए विचार मन में आया कि रीजनल करें, पहले क्षेत्रीय करें, एक साथ 4-4 5-5 राज्य जाएंगे तो समय

0: साल 2024-25 से 2030-31 की अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन की शुरुआत की है। खाने के तेल में आत्मनिर्भर होने के लिए ये बहुत हमारे लिए और आज का दिन में जरूरी है। इसी आधार पर जो माननीय कृषि मंत्री ने बोले दलहन तिलहन अर्थात पल्सिड और पल्सेस में हमको कैसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हुए आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, इसी आधार पर हमको आज का दिन में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में कैसे सारी किसानों को इसी साथ पर ले जाएं और हमको इसका बहुत जरूरी भी है। आज हमने जैसे उड़ीसा में हमने किसानों को बोनस भी बोलते हैं, लेकिन हमने उनको इनपुट असिस्टेंट के नाते पैडी प्रोक्योरमेंट में पर क्विंटल में पहले से शुरुआत से हमने 800 रुपया दिए हैं और एमएसपी के साथ मिलाते हुए पर क्विंटल में 3100 रुपया देने के बाद और भी हमने रबी फसल में भी और खरीफ में भी दे दिए। और जैसे आज खेती बाड़ी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम किसान सम्मान निधि के नाते हमने जोड़ दिए हमारा और एक सीएम किसान सम्मान निधि, तो 6000 पीएम किसान और 4000 हमने दो किस्ती में सीएम किसान दे दिए और देते हुए 10000 पर ईयर में हमने जो किसानों को दे रहे हैं। इसी आधार पर सबसे ज्यादा सहयोग किसानों के लिए हमारा उड़ीसा सरकार ने आज कर रहे हैं। इसी आधार पर आप देखिए रबी फसल में इनपुट असिस्टेंट कई राज्य सरकार नहीं देता है और हमने एक डिसीजन ले लिया आज कई गुना ज्यादा करने के लिए जो मिशन पर आप आज काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम उड़ीसा में सियर्न योजना के तहत मिलेट्स बेहतर उत्पादन अमृत अर्न योजना के तहत ऑर्गेनिक राइस उत्पादन आज हम कर रहे हैं। मिलेट उत्पादन से पानी और खाद का व्यवहार बहुत कम होता है और लोगों के पुष्टि साधन के लिए ये एक सुपर फूड है। ये खासकर हमारे आदिवासी इलाकों जहाँ ज्यादा खेती किया जाता है इसके ऊपर और भी काम होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिक इसके ऊपर अधिक ध्यान दें। कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं बुनियादी ढांचे के मजबूत करने के लिए जनवरी 2025 के दौरान फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कोल्ड स्टोरेज योजना हमने आज शुरू कर चुके हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना ओडिशा सरकार की एक प्रमुख योजना है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उद्यमिता के बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ तक सब्सिडी दे रहे हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि क्षेत्रों में निवेश करें। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और इस ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस की सफलता कामना करता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम वंदे उत्कल चरणी।
1: उद्घाटन उत्सव परे द्वितीय अधिवेशन रे पूर्व क्षेत्र विभिन्न राज्य सरकारों प्रतिनिधि माने भिन्न भिन्न कृषि भित्तिक विषय उपरे विशद आलोचना पूर्वक सेमानंकर अनुभव ओ आभिमुख्य उपस्थापन करथिले। ओडिशा सरकारंक तरफरु कृषि ओ कृषक सशक्तिकरण विभागर सचिव श्री सचिन रामचंद्र यादव कृषि संप्रसारण उपरे होइथिबा कार्यक्रम संपर्करे तथ्य उपस्थापना करथिले। सेहिपरि पश्चिमबंग सरकारंक पक्षरु कृषि विभागर प्रमुख सचिव श्री ओंकार सिंह मीना मंजी उत्पादन पई होइथिबा सर्वोत्तम पद्धति संपर्करे आलोकपात करथिले। परे परे झारखंड सरकारंक तरफरु कृषि विभागर उपनिर्देशक श्रीमती कंचन कुमारी एफपीओ लेड भैल्यू चेन्स एंड एग्री स्टार्टअप इकोसिस्टम उपरे होइथिबा सर्वोत्तम प्रयास संपर्करे उपलब्धि उपस्थापना करथिले। छत्तीसगढ़ सरकारंक पक्षरु कृषि विभागर सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजनार सफल रूपायन संपर्करे आलोकपात करथिले। यहापरे बिहार सरकारंक पक्षरु कृषि विभागर निर्देशक सौरभ सुमन यादव राज्यरे मका उत्पादन ओ बजार संजोग पई होइथिबा सर्वोत्तम प्रयास संपर्करे आलोकपात करथिले। द्वितीय अधिवेशनर शेषरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदर महानिर्देशक श्री मंगिलाल जाट समन्वित कृषि प्रणाली संपर्करे निजर प्रस्तुति उपस्थापना करथिले। अपराह्नरे आयोजित तृतीय तथा उद्यापनी अधिवेशनरे भारतर पूर्व क्षेत्रर विभिन्न राज्यरु आसिथिबा मान्यवर मन्त्रीमाने सेमानंकर वक्तव्य रखिथिले। एही क्रमरे पश्चिमबंग सरकारंक खाद्य ओ जोगाण मन्त्री श्री अशोक कीर्तनिया निज वक्तव्यरे कहिले
2: मंत्री जी का पास एक रिक्वेस्ट है हमारा जो हमारा फिशरमैन लोग है आप उसका ऊपर में थोड़ा ध्यान देगा जरूर। और हमारा जो बंगाल से जो ऑफिसर लोग आया हम उन लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करके जा रहा है यही से ये डिपार्टमेंट के जुड़ा हुआ हर सुविधा पश्चिम बंगो का आम जनता को मिलेगा और जितना जल्दी हो सकते हमारा बंगाल को जो जो डिमांड है माननीय मंत्री जी को आप लोग लिख कर देगा। पश्चिम बंग का आम जनता तरफ से हम यही रिक्वेस्ट फिर भी करके जा रहा है, माननीय मंत्री जी हमारा ये डिमांड जरूर पूरा करेगा एवं अगले 5 साल में हम वादा करके जा रहा हूँ यही से बंगाल को हम लोग उस जगह में पहुंच देगा जो जाएगा एक टाइम फार्मर लोगों का इंडिया में था।
1: बिहार राज्य माननीय कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा निज वक्तव्य कहिले,
3: आज एग्रीकल्चर पर हमारा कल्चर देश का निर्भर करता है और यह कल्चर कई संदेश भी देता है, कई भावनात्मक जुड़ावों को आज हम जय जगन्नाथ का जिनका दर्शन करते हैं वो तो भी एग्रीकल्चर के प्रसाद से एकादशी जैसे व्रत में भी आज हमारा वह प्रसाद चावल का धान का जिस तरह से जुड़ाव होता है ये लगाव हमारे सांस्कृतिक विरासत को भी बताता है। हम जिस राज्य से आते हैं वह राज्य जनसंख्या में घनत्व के मामले में देश से सबसे ज्यादा, पहले 1106 था अब लगभग 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पहुंच गया है जबकि देश में यह 400 के लगभग है। जमीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, घनी आबादी होने के कारण जमीन की कीमत जान से ज्यादा है और वह आजादी के बाद संयोग से बड़ी आबादी हमारा बिहार बंगाल उड़ीसा एक साथ था। आज कई मामले को हमने राजस्व भूमि सुधार मंत्री के रूप में देखा, एक नया अभियान भी शुरू किया, संभालने का प्रयास भी किया और आपके इस एग्रीकल्चर का अनुभव को लेके राजस्व भूमि सुधार मंत्री के रूप में 2 महीने के अंदर जनवरी और फरवरी में 47 लाख से ज्यादा एग्री स्टैक फार्मर आईडी हमने बनवाया कृषि विभाग के सहयोग से, हमारे नवदेश्वर जी प्रधान सचिव के रूप में और सीके अनिल दोनों मिलकर के पदाधिकारी भी पूरी टीम भावना से काम किया। मैं आगे जून तक 30 जून तक रखे हैं कि जो लक्ष्य 87 लाख का है उसको पूरा करने की पूरी ताकत से हम लोग प्रयास करेंगे।
1: छत्तीसगढ़ सरकार को कृषि विकास और कृषक कल्याण विभाग मंत्री श्री राम विचार नेतम तंका वक्तव्य कहिले,
4: छत्तीसगढ़ ने हम लोगों ने जो शुरुआत किया है धान से शुरुआत करके धान के बेहतर प्रोक्योरमेंट से लेकर के उनके मेलिंग की व्यवस्था से लेकर के बाकी चीज़ें का पैदावार को कैसे हम बढ़ा सकें, तो हम जहां पैदावार भी बढ़ा रहे हैं उनके मार्केटिंग की भी अच्छी व्यवस्था करें, खरीदने के भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे छत्तीसगढ़ में हम सब प्रयोग किए हैं अलग अलग से और निश्चित हैं आपके पहल प्रयास से आपके सहयोग से हम लोगों ने, हम कृषि ही नहीं कृषि के साथ साथ में उद्यानिकी को भी काफ़ी हम बढ़ाए हैं, उद्यान के क्षेत्र में भी हम नवाचार हमारा अलग से हो रहा है और निश्चित ही हमें कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा समय था जब हम दूसरे प्रदेश से हम निर्भरता हमारी थी लेकिन आज है कि हम जरूरत के से भी अधिक पैदा जब कर रहे हैं तो बाकी राज्यों में भी सप्लाई हमारा हो रहा है।
1: परे परे ओडिशार माननीय उपमुख्यमंत्री तथा कृषि और कृषक सशक्तिकरण मंत्री श्री कनक वर्धन सिंहदेव तांक वक्तव्य कहिले,
5: यहाँ पे शिवराज जी हमको जो फार्मर्स रजिस्ट्रेशन को लेके जो एग्री स्टैक की बात कही गई है, हमें जो टारगेट 44 लाख फार्मर्स का हमको जो दिया गया था जिसमें से 17 लाख फार्मर्स का हम कर चुके हैं। बाकी सुबह कहा हमारे सचिव ने कि अगस्त 2026 तक हम बाकी को कंप्लीट कर देंगे। दलन तिलन की जो आपने बात कहा है उस एरिया और प्रोडक्शन को हम पल्सेस का बढ़ा रहे हैं और उसको पीएम आशा के माध्यम से उसको जितना बढ़ा सकते हैं आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। पल्स मिशन CRFM के अंतर्गत कॉम्प्रिहेंसिव राइस फॉलो मैनेजमेंट स्कीम में 4 लाख हेक्टर हम करेंगे, प्रोडक्शन 2 लाख मेट्रिक टन करेंगे, प्रोक्योरमेंट 20,000 मेट्रिक टन अभी हमने किया है, पेमेंट जो मार्कफेड डायरेक्टली किसानों को देता है। फोकस हमारा रहेगा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन पे, 2024 से ही ऑर्गेनिक कल्टीवेशन एंड नेचुरल फार्मिंग के ऊपर में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हमने 2026-27 में 60,275 हेक्टर कवर किया है। हम 1,00,000 किसानों को अमृत अन्न योजना के अंतर्गत जोड़ रहे हैं, 640 हेक्टर प्रोडक्शन कर रहे हैं और 1280 मेट्रिक टन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन का। बलभद्र जैविक चास मिशन के अंतर्गत नेचुरल फार्मिंग हमारा हो रहा है। NHM के अंतर्गत 28 कोल्ड स्टोरेजेस हमारे कंप्लीट हुए हैं।
1: यहाँ पर भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण विभाग राज्य मंत्री श्री भगीरथ चौहान अभिभाषण कहिले,
3: किसान भगवान तो नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। जो 140 करोड़ जनता का पेट भरता है, रात दिन मेहनत करता है, नहीं तो उसके काम करने की आयु सीमा है, नहीं उसके काम करने की समय सीमा है। ऐसी स्थिति में जो वो काम कर रहा है, उस किसान जो आज भारत तो आत्मनिर्भर होगा ही, पर इसका उद्देश्य मैंने यही है कि आखिर इस देश का किसान कैसे आत्मनिर्भर बने। और इसके लिए जो काम किया जा रहा है, मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे देश भर में जो इसकी प्रशंसा हो रही है और किसानों में विश्वास जगा हुआ है। हम हॉर्टिकल्चर में, हम फल और फूलों में आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। मैं तो कह सकता हूँ कि इसके लिए हमारे ICR और हमारे KVK और APO ये मिलकर काम करें, क्योंकि KVK कृषि विज्ञान केंद्र वो है जो सीधे किसान से उसका जुड़ा होता है। प्रधानमंत्री जी ने जो APO 10,000 से अधिक पूरे देश में APO बनाए, यदि वो भी ईमानदारी से काम करें तो मैं कह सकता हूँ कि हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
1: तंक परे भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण विभाग राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर वक्तव्य कहिले,
4: मैं दो बिंदु आपसे निवेदित करना चाहता हूँ। बिंदु है अच्छे बीज। हम लोग 22 महीनों से प्रयासरत हैं, लेकिन अच्छे बीज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा, समय पर किसानों को नहीं मिल रहा। उस पर विशेष ध्यान देना होगा हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों को। और दूसरी बात, जब हम स्वस्थ रहेंगे, खेत स्वस्थ रहेगा तो हम बलवान रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे। खेत को स्वस्थ रखना, शरीर को स्वस्थ रखना तभी संभव है जब हम जैविक खेती के लिए प्राकृतिक खेती पर हम जोर देना शुरू करेंगे। हम पदाधिकारी भाइयों से कहना चाहते हैं कि अब तो आप श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का जो नेचर है, उस नेचर को पहचाने हैं और उस नेचर के अनुसार जमीन पर काम करने का कोशिश कीजिए।
1: शेषे भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण विभाग जुग्म सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल धन्यवाद अर्पण करते।
6: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार को विशेष धन्यवाद देता हूँ, उड़ीसा सरकार को विशेष धन्यवाद देता हूँ, आए हुए सभी आगंतुक मंत्रीगण, पदाधिकारीगण, वैज्ञानिकगण सहित सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले, व्यवस्था में सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत हृदय से आभार। जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।
1: एटी शेष करुछु गतकाली भुवनेश्वर ठारे आयोजित पूर्वांचल जोन आंचलिक कृषि सम्मेलन 2026 रो बेतर विवरणी। नमस्कार।
7: शुणुले पूर्वांचल जोन आंचलिक कृषि सम्मेलन 2026 संपर्क करे बेतार विवरणी। उपस्थापन थिले समीर मिश्र, वैषयिक सहायता जगैथिले त्रिलोचन बेहरा एवं सनातन मुर्मू, प्रयोजना राजीव कुमार महंत।
8: श्रोतामाने शुणुले कार्यक्रम रिलीज करी प्रचार करलु आकाशवाणी कटक केन्द्र। कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଣ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ, ଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ଶୋଭା କୁର୍ତ୍ତୁ। ପରିବେଷଣ କଲେ ଠୁମରିରେ ରାଗ ମିଶ୍ର ଖମାଜ, ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସେ ସମାଚାର ସନ୍ଧ୍ୟା କେ ସାଥ ମୈଁ ଲଭଲି ନିଗମ। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

0: मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की

0: खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 पर बंद हुआ।
0: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next

0: Aici, nu acai. Nu acai. Pete borsor juna bhog thau. Nu a pindma. Dihe borsor juna kapda thau. Tathapi bhil asa ache.
1: Asa? E asa? Sunuchu?
2: Kaela?
1: Sunta? Yar ke tike aata?
2: मुई नहीं पारे मोर याडे कितने कते बूता पड़ी छे पीटो बाट ले जाई अल्पिना दे ले जाई कते कथा ए दे गामछा मागू जो बैले बाहरे है ओडा ने सुखू छे उलिया न
1: सुन परे बैली रे अच्छा गुटे हो डाकले भी टिके सुनबार के नहीं आ रीति फेरी माने पति परमेश्वर बोली डिंगरा पिटबे
3: का बोलुथलो हिमा कहाँ बोलू थलो गो
1: बोली यार कितने बेले गो के सुन ले तो जे कार पाखे फुर्सत अछि
3: खो एड की टिके कथा ती एडे राघेसन ए दे तुम्हारी साठ खण को तो टिपी दउथली देखो तो केनता कुलकुला हे गला न जे खणे न तो अछि आर खणे घिन बोले तो सुनो नहीं गो
1: हां हां घिनमिनो खाए बार पी बार के पैसा नहीं उठबार तते कपड़ा लता घिना दिसुछि
3: नाई कहू छे तुमको कही करी पर मोर किछि लाभ नै न कह बाटा जा सारे का बोलू थलो जे जल्दी कह से आडे फेर मोर
1: मुई केबे का बोलू थली
3: हे भगवान मुई काई जैसी देखो तो इता कर कथा जे होय गो मते काना माउली लागी छे जे सो सो जिनके मुई नर दी आई थी तिना तू हेला न देखु छे तुमे आर तुमर भितरे नाई न गो
1: ओहो हाँ हाँ हाँ हाँ ये मुनि कहीं गला का नहीं दिस बार ची
3: कहीं जाता भोटा के खेली खुला जाए तो वा याद तो थीला देखो तो को आज मुनि नुआ खाई मी बोली केड़े उसोत बसोत्रे है उचे जे सोखालू सोखालू गाधी बुड़ी करी सामले गुड़ी नू परे फिरी आयला ना केड़े कुसिर दिन टे ऐसा थे
1: बड़े खुशीर दिन टैच हेले की केबे भाभी छी केबे भाभी छी काए जे कुड़ा दु नुआ चावल खाई दे करी बरस चाकर भूखे उपासे किंता तड़पु छन छी की कहे भाप्पा कार कहे जाउ छी कि माने मले केते चीले केते पूर्ति तो नहीं उल्टी छे
3: इमा काहे लागो आज तुम्हें केंता को थारो को कहू जो
1: नहीं नहीं नहीं किछ नहीं
3: ए कान ही छे तुमर बोलू छे फितरे फितरे एंता चली पुड़ी जाऊ छ कहरिर किछ सुनबार नहीं कहा के किछ कहबार नहीं फते फिल नहीं कह पासरी देलो मते कहे गो पोराडे देखो तो सोर करू छ कहे से पहला राती पोरपुड़ार उन्ना खुली आखिर लुह बुझी कहाँ बोली थी लोजे आशा आज नु सात जन्म तक तोर मोर सुख दुख फलमान सब गुटे रंग रहा से रंग टा कणा हिते जल्दी फिका पड़ी गला से कथा के तमे हिते जल्दी हिले पासरी दल तुमर सुखटा खाली कणा मोर सुख थिला तुमर फलटा खाली काना मोर फल थिला तुमर दुख के टिके उना करबार अधिकार बिल मोर नाइन कि सात जन्म तक साथ दे पारमी बोली मन तुमर विश्वास नाइन उठ इतिहास बाहरे कि आइले कले का बोलबा कह तो उठ गो झाकर बुढ़ा नुआ चाउल देकर गला न
1: का बोलु
3: झाकर बुढ़ा नुआ चाउल देकर गला न बोली जो तो जा होटली नु काई काई डटके मिलबा बोले आन बजो उठ उछु नहीं करोगो जो
1: ओहो चिमी जे महलिया महलिया के तते काना धरे देबा काए पैसा थुड़े हाते होछे पांच पैसी ते बीतो नहीं नो हाँ ए से पांच टंकी ता देइथु तो दरमा मिलले एका सर सूद सहित फिरे देमी
3: पांच टंकी केन पांच टंकीर कथा कहू छ
1: तोते जेन सिदनो धरे थिली दे दे दे दे हटली बंद हो जा तिहार बाहर कथा
3: मत के गो
1: पहला दे तो पछे सोर करू के
3: नाय गो मा तुम्हें मत के ना दे
1: का से देली मुड़े जदि गुबर नाय भरी टिके जोर दे आर बने करी सोर कर बजारु सामान आनली 494 टंका आर टंका कर गुलगुला आनली मुनीर लगी आर सेनु जेन अग्रिला 5 टंकीटे दरकार पड़ले खर्चा बच्चा करबू बोली तोर हाते धरे दे थिली सोर कर सोर कलु
3: हाँ तुम्हें मत नहीं धरे
1: धरे छे
3: नहीं धरे गो तुम्हें कहता टंका जदि मत धरे थी तो हेराणीर कुचनीर उधारीटा नहीं चुके देती ना का हेला जे रोज 10 कथा सुनी मरुती थी
1: हेटा तुई जानबू आर से कुचनी जानबा हेले मुई तते 5 टंकीटा धरा बाटा धरे छे सुर कर पेल पुड़ी पुड़ी चाहिए रंधा घरे तुई रांधु थुलु तते थरे छे आर तुई तोर पनत कानी थी मोर आगमुड़े गठेछु
2: हे मा मुई मरी जे मे गो तुमे मत नाए धरे
1: स्टार्ट हला शुरू हला काय तुमर तुमर माझी मानकर इटा अच्छा कुटे बदगुणाय हो कान टिके हिचे कि नहीं कांदी रोड़ी करी आयकारू एकदम गंगा जमुनार स्रोत बाहर करूछ ए ए बंद करी पैखन अरे अरे बंद करी पैखन
2: तुमको मजा लगु छे काईगो मोर देह परान बारे गलानो मुनीर किरिया मु जदि असत को तुम बेले याद पटो करी मरी जिमी स्कूल गला बल के मुनीर रोज 8 टे के 4 टे लागे केते कांसी मोर काने घिची घिची पैसा मांगु छे हेले मु ओला जुगेन हटनीटे की चालनीटे तके गिने कारबार के देने पर बार उल्टिया तके पिट्टी मारी करे के तुझे
1: अच्छा मुश्किल तो 5 टो की गाही गला से उभी गला कि मुसा भुई नहीं गला आए इथी फेरी माने घर गृहस्थी संभलाबे काय हो मास जाकर गाय बलत खटला लेखे टंका गुड़ा दू कमाबो आर ई माने थिबे जे घरे बसी करी एंता मौज कर छुबे
2: मोय सत कहु जे होई किछे नाय जानी
1: हां तो सत तुई कहु छु असत कानो मुई कहु छे अरे खाली बड़े बड़े कथा कह देले नाय हुए ताके करी करी देखे पारले जे ईटा तुई मोर दुख उना करु छु हैं कि उना अछे जे भरना करु छु
2: सत कहु छे 5 टंकीटा
1: मोर बुआ खाई देला हैला
2: 5 टंकीटा मुई खर्चा करी दे छे हाचुड़ा को मेला मेला लागुतला जे चोरी पड़तो गिनी बके दिली
1: नहीं कहू छे कहे अयो पहला नु सत कथा कही दे थिले तो जाई थी ता पटी इत्ते कथा कहूं आयला हो
4: बालमुकुंद दादा
1: के अरे सीताराम तुई
4: नुआखाई जुहार दादा
1: जुहार जुहार आ आ बस अर केंता अछु बो जी छु तो
4: मुई तो केबु मरि सारती नबो तुमे माने अछो बोली जी छे
1: कहाँ हला बो
4: दादा ई जन मुनसर दिहे चार आंगुलर पेट टा लटकी छे नहीं बढ़ा रढ़ा है वो जेते खुआले प्याले भी इतर पेट नहीं पूरी आर आमोल लेखन लुकर भागे तो बेले खाले दुई बेल उपास रहे घाय घाय मुई भावसी चोरी करती कैं डकैती करती कैं भल करी मुठे खाई पड़ती भल करी मुठे खोई पड़ती हेले तुमर मन कर स्नेह ममता मते मना करसी रे नहीं सीताराम नहीं बस सीताराम जी जैसी तार आत्मा जी जैसी
1: आर माँ दीपा केंता अच्छे
4: भल अच्छे चला बोला कला न अरे मुझे तो पासिर दी थी ए दे ने 5 टंकीटा उधारी तो चुके दिली दादा हेले एहसान टा
1: से दिन मुई 5 टंकीटा तते दी थी ना
4: हाँ बो मुनसर भीड़ थी मुनुष्टे खुजी बोला कैन मिलुची उसो कोसा टिके घिनबार लगी से दिन तुई 5 टंकीटा नहीं दी थी तू बोले के जाने मोर माँ बची थी ताकि नहीं ये मोर माँ तते आशीर्वाद पठे छोटी छोटा देखी करी ବୋହୁ ସାଙ୍ଗେ ଘା ହେବ ନା ଯେ ଘର ଆଡ଼େ ବୋହୁ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଦାଦା
1: ଏ କାଁ ବୋଇଲୁ?
4: ବୋହୁ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଇଥିଲା ବୋଇଲୁ ମୁଇଁ ଯାଏସି ବାହାରେ ଜନକୁ ଟକେଇ ଦେଇଛେ ଆର ଦିନେ ଆମି ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖାମା ଯାଏସି ଦାଦା ଜୁହାର
1: ଜୁହାର ଆଶା ଆଶା ତୁଇ କାଣା ଆଉ ବୋଲୁଛେ ମନୁଷ ତ ନୁହ ମନୁଷ ହେଇଥିଲେ ଚାପାରି ତାହା କାଲି କହିତି ଆର ତୁଇ ତତେ ମୁଇଁ ସତେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଟା ଦେଇଥିଲି
2: ତୁମର ଆଗମୁଣେ ତ ମୁଇଁ ମୋର କାନିତି ଘଟେଇଛେ
1: ଆର ସେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ତୁଇ ଚୁଡ଼ି ଘିନି ଦେଇଛୁ ନାଇଁ ମୁଇଁ କାଣା ପଚାରୁଛି ଯେ ଶୁଭୁଛେ କି ନାଇଁ ସେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ତୁଇ ଚୁଡ଼ି ଘିନି ଦେଇଛୁ ଆଏ କି ନାଇଁ? ମୋର ଆଡ଼େ ଦେଖିକରି କହ ତୁଇ ସତ କହୁଛୁ କହ ଆଶା କହ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ଆଶା ଆଶା ଜନମ ନୁ ଆଜ ତକ ଯାହା ଗାଲି ଶିଖିଥିଲି ତେତେଲ କଲି ଆର ତୁଇ ମହାପ୍ରୁ ବିଷ ପିଲା ବାକି ସବୁ ସହିତେଲ କଲୁ ତୋର ଆର ଗୋଟେ ନା ସରବ ସହିନୀ ହେଲେ ଫିଲ ତୁ ଆର କେତେ ସହେବୁ ଲୋ କେତେ ସହେବୁ? ତୁଇ ତ ମନୁଷ ନୁହ ଦେବୀଟି।

0: आसो हबीलदार पंडुरा खबर काना
1: गुटे खास इनफॉरमेशन दवा लगे आई छे मुई सुनो आज रातीर 12 बजे नु 2 बजे भितरे 2 नंबर और 4 नंबर गेट थी चेकिंग अछे।
0: अच्छा
1: जहा माल पतर पार करवार अछे 12 आगु आर 2 बजे उतरू पार करी दियो ना तो आज गड़बड़।
0: इनफॉरमेशन टा सही है तो
1: खान कोसी रे 14 पुरुष हलान हविलदारी करी आउचु मोर बापा पंडुराम सानबड़ हविलदार थी मोर रोजा कंडुराम सानबड़ हविलदार थी मोर पनोजा
0: रो हविलदार तुम्हें हेंता करी तो से बन मनुष्य जमाना तक पले जीव लखे लागुची
2: न्यो पांडुराम रखो पूरा हजारे तुमर दरमा
1: हजारे इथी काण हवा गया
0: टोका पैसा के तो बड़ा लोभ
1: काण करमी बुढ़ा लोग मोर छो छोटा जी गुटे नहीं जुड़े नहीं एका सार छो छोटा ओधा डर्जन बड़ बड़ मोर मोर कहाँ करी ओधा डर्जन जी जानी छो से माने ओधा डर्जन जी आन बोली नुहे से माने खाली गुटे पू नुहन बोली अरे अरे मुई भी सेन रोसी जेन झी के मुनुष हिसाबे नहीं बजारे बसाला गुटे तरब लेखे देखा हैसी जेनटा कि बिका हैसी घिना हैसी और जह दिन गले पची सड़ी भी जाएसी।
0: अरे हविलदार मुई तुमको खेचड़ करूली तुम्हें तो पूरा इमोशनल नहीं जाऊ
1: इमोशन टिक अच्छे बोली तो मोर मोशन चलुचे ना तो कसन झी जन्म चुलमुड़की सत कथा ना है तो हर दिन काट लेके बुझा बुझा झी चला हो तू तक टोंका टोंका हजारे घोटाला गुटे हबिलदार तार ओधा डर्जन झी के ब्याह करी पारबा मुई मुई काणा करमी हबिलदार संगे संगे गुटे भाप पिला नाचार बाप।
2: ठीक अच्छे आयबा मासु तुमर दरमा पूरा 5K लगीगला हेला तो हेले इनफॉरमेशन टा
1: खास नु खास नु खास वार चाहिए।

0: से नाई अबार तक एंता बसी थिमी तुम्हें जो सुईब जो बापा तुम्हार देह पर भल नाई ना
1: मोर दी ही भल नाई ना कि तोर दी ही भल नाई ना लो हे तो सखालू गला जे रातिर बार बाजी आला न खुआ नाई पिया नाई घाटर पथर लेखे पड़ीछु जे पड़ीछु न
0: तुम्हें तो कहिथिलो बापा दुख सहबार लगे छाती के पथर करबा के पड़सी
1: हाँ लो माँ हेले
0: तुम्हें जो तो बापा तुम्हें जो
1: हाँ तोर धीरज शक्ति आगाड़े तो काल फेल मोल लुआई दीथिला लो तु चिंता नहीं कर माँ तोरी तपस्या जरूर सफल हेबा मोर आशीर्वाद अच्छे देखुता देखुता तोरी तपस्या जरूर सफल हेबा माँ जरूर सफल हेबा
0: किए किए
2: आशा मुई है पालमुकोन कबाट खुला सा किंता अच्छ रे इटा तोर कहीं अवस्था करुन देख तो
0: सुखे अच्छे सुख तो मोर है दुख कहीं ना तुमार उन्हीं तबु फ्री सबु दिन लगी सुई पड़ला मुई जीजे देखो देखो मुई जीजे मनु जो खुशी दुनिया तैयार किए थी बा कह तो
2: आशा आशा
0: और जदि केन काणा भूल हो जाइला दुई पद गाली दे तो दुई थप्पड़ गाले मारी दे तो हेले एंता मते एकला

0: हाँ बिलदार, तुम्हें सत कहू छो तो? तुम्हें सत कहू छो तो आज बालमुकुंद आएबे?
1: हाँ यहाँ चीनी तो आएबे।
0: माँ ए माँ आशा हाबिलदार आज्ञा का बैले जे सुनि पार्लु तो? तोर तपस्या पूरा हेला बा, तोर व्रत पूरा हेला बा, सावित्री तपस्या आगाड़े चम लेखें।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोता माने सुनुचंती ओडिया लघु संगीत कार्यक्रम परवर्ती गीतटी सुनंतु। कंठशिल्पी पंकज जाल, गीत रचना निजाम, संगीत विभूति भूषण।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: গীতটি কণ্ঠশিল্পী ইরা মহান্তি, গীত রচনা নিজাম এবং সঙ্গীত দিয়েছেন বিভূতিভূষণ।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ओडिया लघु संगीत कार्यक्रम शेषे शुणु ये गीतट कंठशिल्पी ईरा महांती गीत रचना करछन्ती अरुण मंत्री और संगीत संयोजन विभूति भूषण।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଥିଲେ ବବୁଲ ସୁପ୍ରିୟ, ଅରବିନ୍ଦ, ପଙ୍କଜ ଚାଲ, ଇରା ମହାନ୍ତି ଓ ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ। ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ଶୁଣୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ।
3: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଏହା ଚିନିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ତର୍ପଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ଇଟାଲୀ ଓ ଭାରତର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକେ ଖାସ୍ ରାଜନୈତିକ ସହଭାଗିତାଥି ପରିଣତ କରବାର୍କେ ଦୁଇ ଦେଶ ହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆମେରିକା ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଭି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଲ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇକରି ରହିବା ବୋଲି ଆକଳନ କଲା ଜାତିସଂଘ। ଫେରଗା ହେବାର୍କେ ଥିବାର ଏନ୍ଇଇଟି ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାକେ ନିରାପଦ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ଜୋର୍ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଇବୋଲୋ ପ୍ରକୋପକେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରବାର ଆଉ ସମାଜକେ ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷକେ ପହଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଲ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିକରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବାର୍କେ ପଡ଼ବା। 2024 କ୍ୟାଡ୍ର ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିକରି କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଉ ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରଥି ଜାପାନ ଅତ୍କା ସହଯୋଗ କରବା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବାହାରିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଲ ରାଜ୍ୟ 85.85% ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଲେ ପାସ୍। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ ଖେପ ଆଷ୍ଠାନୁ ହେଲା ମୂଲ। ଆଇବା 31 ରବିବାର ଦିନର ସକାଳ 11 ଆକାଶବାଣୀର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଏ ଦେଶ ଆଉ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର ବିନିମୟ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟିଆର୍ନୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳଥି ତିଆରି ହୋଇଥିବାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ପ୍ରଣାଳୀର ଦୁଇଦିନିଆ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହିତ ହେଲା ଶେଷ। ପୃଥିବୀକେ ସୁସ୍ଥ ରଖବାର୍ଥି ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଓ ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବାର ବହୁଟେ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ପାଳନ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ମହୁମାଛି ଦିବସ। ଆଇବା ହପ୍ତେ ତକ ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତକ ବଢ଼ବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 46 ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ତତଲା ସହର। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଇନୁ ଶେଷ ହେଲା। ଜୁହାର।
0: ଶୁଣୁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ଆମର ଆଜିର ପ୍ରସାରଣ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6:30 ଶୁଣିବେ ଆଜିର ଭାବନା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ସନ୍ତୋଷ ପିଙ୍କ। 6:47 ଶୁଣିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ। 7:10 ଶୁଣିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା, ଏଥିରେ ଶୁଣିବେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ଡାକ୍ତର ତନୁଜା ପାତ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7:35 ଶୁଣିବେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କୃତି ତପସ୍ୱିନୀ। ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ରଚନା ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7:50 ଶୁଣିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗାର୍ଗବ ପ୍ରସାଦ ମେହେର ଓ ନୀଳାଚଳ ପୁଟିଲ। 8:30 ଶୁଣିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କ୍ଷମାନିଧି ବାଦୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ବିଶ୍ୱାଳ। 8:45 ଶୁଣିବେ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ପଣ୍ଡା, ସୁପ୍ରଭା କୁମାରୀ ପାଢ଼ି ଓ ମନସ୍ୱିନୀ ନାୟକ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ 11:05 ଶୁଣିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଢୋଲପାରେ ବଜା, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ, ପୀତାମ୍ବର ପୁଟେଲ ଓ ଧରଣୀଧର ପଣ୍ଡା। 11:30 ଶୁଣିବେ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲା ଝରକା। ଆସନ୍ତାକାଲି 12 ଶୁଣିବେ ବାତାୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତ ଶୁଣିବେ। 12:30 ଶୁଣିବେ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉମଙ୍ଗ। ଅପରାହ୍ନ 5:00 ଶୁଣିବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମିନତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଅପରାହ୍ନ 1:20 ଶୁଣିବେ ଘର ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ ଶୁଣିବେ ନାରୀ ଓ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ରେଣୁକା ପଣ୍ଡା। ଅପରାହ୍ନ 2:45 ଶୁଣିବେ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅପରାହ୍ନ 3 ଶୁଣିବେ କିଷାନ ଭାଷାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାକା ପୁପୁ ଚକାଚକା, ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ସନ୍ତୋଷ ପିଂ। ଅପରାହ୍ନ 3:30 ଶୁଣିବେ ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 4:00 ଶୁଣିବେ ସନ୍ଦେଶ ଟୁ ସୋଲଜର୍ସ, ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। আসন্তকালি সন্ধ্যা পাঁচটা বাজে দুই মিনিট শুনবে লোকগীত কার্যক্রমের সঞ্চার পরিবেশন করবে শান্তিলতা বিশ্বাল ও সাথী। পাঁচটা বাজে তিরিশ মিনিট শুনবে যুববাণী কার্যক্রম, এতে তাইকোন্ডো খেলাড়ি আশিষ হোতাঙ্ক সহ সাক্ষাৎকার। ছটা বাজে দশ মিনিট শুনবে ওড়িয়া লোক সঙ্গীত, ছটা বাজে তিরিশ মিনিট শুনবে বিকাশ মন্ত্র রিলে করে প্রচার করব আকাশবাণী কটক কেন্দ্র। আসন্তকালি রাতে সাতটা বাজে দুই মিনিট শুনবে সম্বলপুরী আঞ্চলিক সংবাদ, রাতে সাতটা বাজে পঁচিশ মিনিট শুনবে জিল্লা হালচাল রিলে করে প্রচার করব আকাশবাণী কটক কেন্দ্র। আসন্তকালি রাতে সাতটা বাজে তিরিশ মিনিট শুনবে কৃষি সঞ্চার কার্যক্রম, এতে ওড়িশার মৃত্তিকা কিসম ও ফসল চাষ। আটটা বাজে দুই মিনিট শুনবে সুগম সঙ্গীত কণ্ঠশিল্পী জ্যোৎস্নারাণী মুদালি ও মানস কুমার দত্ত। আসন্তকালি রাতে আটটা বাজে পনেরো মিনিট শুনবে আলোচনা বিবিধতার ভিতরে একতা আলোচক জন্মাঞ্জয় ছতর। আটটা বাজে তিরিশ মিনিট শুনবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কার্যক্রমের কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী বিদুষী শ্রুতি সাডলিকর, পরিবেশন করবে রাগশ্রী। আসন্তকালি রাতে নটা বাজে পনেরো মিনিট শুনবে স্পটলাইট কার্যক্রম রিলে করে প্রচার করব আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র। রাতে নটা বাজে তিরিশ মিনিট শুনবে বিশেষ রূপক কার্যক্রম রিলে করে প্রচার করব আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র। আসন্তকালি রাতে দশটা বাজে দুই মিনিট শুনবে নাটক অদৃশ্য আত্মহুতি, রচনা গণেশ্বর প্রধান, প্রযোজনা শশীভূষণ দাস। রাতে দশটা বাজে তিরিশ মিনিট শুনবে হিন্দি কথাচিত্র গীতর কার্যক্রম। এলা আসন্তকালি আমার কেন্দ্র প্রসারিত হওয়ার থাকা কতটি কার্যক্রম সম্পর্কিত সূচনা আকাশবাণী সম্বলপুর। বর্তমান সময় রাতে এগারোটা বাজে এগারো মিনিট পনেরো সেকেন্ড, এইটি শেষ করুছু আমার আজির প্রসারণ। আমার আসন্তকালের প্রসারণ আরম্ভ করব আসন্তকালি সকাল পাঁচটা বাজে তেপন মিনিট্রে। আজি পাই বিদায় দিয়ন্তু, জয় হিন্দ।